तमस्ते शराब प्रात दिबे हिसाबा गोर गुलाओ पर खदवाड़ा बेहिजाबा दमस्ते शराब प्रात दिबे हिसाबा दमस्ते शराब प्रात दिबे हिसाबा अरे यो गुली दखाए सो पनंदारा शो अरे यो गुली दखाए सो

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
1: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
0: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

0: Did you always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own show? With the internet, there's so much easier to share your power with the world.
1: That's a radio.
0: With Listen to My Radio.
2: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
3: दादी रेडियो दिल पर स्तासु दजरावास।
4: स्तासु पल चैनल
0: रेडियो दिल पर।
5: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
6: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।